फिर कपड़ा बहू दे तो ठाक लै जा। तना बड़े चाच कुमार के नाल पंडित जी निकल गया। पंडित जी ने तेल चो इंतजाम बन ले किले के नाल 10 किलो का बट्टा

ते कई वेरा सत संगत ना मिले, साकत पुरशां दी संगत मिल जावे। तां जितने मनुख दे शुभ कर्म होंदे हन ओ नष्ट हो जांदे हन। जिस तरह धन गुरु नानक पातशाह जी दे पास एक सेवक आया करदा सी, रोज निता प्रति इसने आना सतगुरां दे चरणां विच नमस्कार करके बाणी श्रवण करके जाना। इहदे नाल एक होर मनुख आया करदा सी, ओ माड़े पासे वल मुड़ जाया करे, घरों तो दोनों कट्ठे निकलने ते कहना, लै भाई मित्रा मेरा रस्ता तां कोई होर है, तू जा सत संगत विच जाना है तां मैनू सत संगत विच की मिल जाएगा। उच्चारण करो श्री, मन विच विचार कीती, भई ए सत संगत नहीं करदा, माड़े पासे जांदा है, कार विहार करां दे सुख काफी इसनू प्राप्त हन, ते मैं सत संगत वल जांदा हां, मेरी आत्मा तो बड़ी प्रसन्न है, पर जितने पदार्थ इस कोल हन मेरे कोल नहीं हन। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक पातशाह जी दे चरणां विचों मथा टेक के ए पुरश जदों वापस आ रहा सी ना, ते इहदे पैर विच कंडा चुभ गया, पैर जख्मी हो गया, अंगड़ा ते आके अपने मित्र लिया जिहड़ा, ओ मित्र कहन लगा, लै भाई अज ही फैसला हो गया है, भाई तू सत संगत विच गया ते तेरा ए हाल होया, ते मैं मारे कर्म लई मैं ऐश करन लई जांदा हां, ते अज मैनू एक मोहर मिली है सोने दी, आ दस तेरा सतसंग चंगा होया कि मेरा रस्ता चंगा होया। तां ए प्रेमी कहन लगा, फिर मेरे नाल चल, धन गुरु नानक पातशाह जगत तारक आप आए बैठे हैं, इस गल का फैसला वो कर देंगे। जाए दोनों प्रेमी आए, सतगुरां दे चरणां विच अरदास कीती, बेनती कीती, महाराज इसका की कारण है, मैं सत संगत विच आया ते मेरे पैर विच सूल चुब गई है, ये विकारां विच घूम रहा है, माड़े कर्म कर रहा है, तो इसनू मोर लभी है। तो धन गुरु नानक पातशाह कह लगे, भाई जिथों इसनू मोर लभी है उस धरती नू पुटो जाके वेखो उथे की पिया, ते जिथे तैनू कंडा चुभिया तू उस धरती नू पुट वेख उथे की पिया। सात संगत बोलो श्री, जिसनू मोर लभी सी ना उसने आके उस ही थां तों जदों धरती पुटी तां की तकदा है, एक देग भरी हुई है कोलियां दी, ए मोरां कोले हो गईयां। जदों मनुख माड़े कर्म करदा है, विकारां दी अग विच चला जांदा है, तां फिर इहदे शुभ कर्म सड़ के सुआह हो जांदे हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, लै भई भले पुरशा, जे तू सत संगत करदा, माया नू भले पासे लाउंदा, तेरे कदम भले पासे चलदे, तां एडी वड्डी देग मोरां दी तैनू प्राप्त होनी सी, क्योंकि तू पिछले जन्म कुछ दान कीता सी ते ओ प्रफुल्लित होया सी, पर तू विकारां दी अग विच सारे पुन साड़ दिते। ते जे भले बंदे नूं जिथे सूल चुभी सी ना, ओ धरती जदों पुटी तां तल्यों सूली निकली, आख्या तैनू अज सूली ते चढ़ाया, पर तू सत संगत विच तैनू सूली बचा के एक कंडा चुभो के पूरा कर दिता है। इसलिए भाई साध के संग न बिरथा जावे, आख्या सत संगत विच जान वाले नूं फल प्राप्त शुभ कर्मां दा, ओ कदे संसार ते आके दुखी नहीं होंदा, ओ सदा खुशियां मानदा है, जिन्हां ने जपया है श्री, जो है सोई।

जैसे सर्प दी आरजा है किसे कम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पां दी सैकड़े हजारां वर्ष आरजा होंदी है। आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे कम नहीं आउंदे, बिना नाम तो मनुख भी किसे कम नहीं है।

बहुत प्रसाद करावे पाठ करावे पर जे निंदा हो गई ओ भी किसे महापुरख दी ते कोई भी कीता होया कर्म फली भूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे को डरदा नहीं, किदे भरोसे ते तू अपना जीवन बताना है।

धरती दी पालना करने वाला ऐ बादशाह भगत लोग उस गोपाल राय की सेवा करते ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं जेड़ा माया दे प्रभाव तो उत्ते है उस गोपाल राय की भगत लोग सेवा करते ने भगती करते ने ते ओदे कोलों भगत दान दीजे जांचे संत जन उस गोपाल की सेवा करके ते भगत

सराय चा बड़ा वड़ा शामियाना है तंबू है केड़ा है। ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लवाना है।

सरायचा है, तंबू है, इंसान जहाजा ते चढ़ लवे, राकटा ते चढ़ लवे, कितना भी यतन कर लवे, पर इस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ओदे घर विच बैकुंठ है, अते सपत लोक समान पूरी आले, ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

मौत है उस गोपाल राय दे कार खेड़ कर दिए, कदी किसे नु मार देंदी है, कदी किसे नु मार देंदी है। इस करके ओ जिड़ा मेरा गोपाल राय है, जिदे कार सूरज चंद्रमा दीवे तरह ने, मौत जिड़ी है ओ दे कार

शिव जी नू क्यों उचारना पिया। हिंदुस्तान दे बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने

महादेव नु छड़ दे नामे सर पर सोना ले नामदेव दे बराबर तोल के सोना ले ले पर भगत नु कुछ ना कहे।

सारा सोना चांदी भेट कीता, पर नामदेव जी ने उस सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तो रुपए बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दिती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वशा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने।

दिसे जा, तुसा आप वर्तनी है, संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ कीमती से जा चुकी ते नदी विच सुट दिती। दरबारी वापस चले गए, बादशाह नु बेनती की। बादशाह, भगत जी ने तुहाडी से जा पानी विच सुट दिती। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा। दरबारियां दे नाल फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सीजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगिया, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक वारी दिखा दियो ताकि मैनू तसली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दिया लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दिया लहरां वाल तकन लग

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान दी प्राप्ति हो जाती अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार सागर तो पार हो जाता है।

पर जे गुरु दयाल हो जाए देहोरा फिरे देवरा कहंदे ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव नूं जदों पंडता ने नीवी जादा समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे ने

बादशाह ने पूछा, पंडित जी एक सेज ता मेरी है, ए बाकी सेजा कीमती किस दिया ने? ता नामदेव जी कहन लगे, बादशाह जदों कोई परमेश्वर दे नाम ते अपनी कमाई विचों कोई चीज दान करदे, पेट करदे दसां नूं आंदे फिरत विचों, ता ओ दान कई गुणा फल के उन्हों मिलदे। इस सारिया सेजा तैनू मिलनिया सन, पर तू दान करके शंका कीता, इस करके ए चीजा हुण तैनू नहीं मिलनी। तां बादशाह उस वक्त हाथ जोड़ के कहन लगा, भगत जी मैं भी बादशाह हिंदुस्तान दा, सारे लोग मेरे को डरदे नहीं पर तुसी नहीं डरदे। उस वक्त भगत नामदेव जी ने मलार राग दे विच ए शब्द उचारिया, सेवी ले गोपाल राय अकुल निरंजन। है बादशाह तू दुनिया दा बादशाह अज है, कल खत्म हो जाएगा, पर जिड़ा साडा बादशाह है ओ परमेश्वर ओ गोपाल, ओ कदी खत्म नहीं होंदा, उन्नू कदी मौत नहीं आंदी। उसने दुनिया बनाई है, खंड ब्रह्मांड बनाए ने।

उस परमेश्वर दे घर की है, भगत जी ने बयान कीता है। जांचे कर निकटवर्ती अर्जन, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक, नारद निजे, सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला, एते जी जांचे हैं करी, सर्व व्यापक अंतर अरी, प्रणवे नाम देओ तांची आन, सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह, ओ परमेश्वर, इतना ब्यांत है, ए जो मैं दसे है, ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है, ओ बनान वाला है, प्रणवे नाम देओ तांची आन। नामदेव आखद है, ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां, ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई, राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो, क्योंकि उस गोपाल राय तू कोई भी वड्डा नहीं।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरा। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा। जी मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होता, मेरा काम इन्ना है। ओ भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनूं गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण तावी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगदी, जांदियां भी देर नहीं लगदी। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु दा धन्नवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार विच बैठे सन, की तक रहे ने। एक कीड़ा दीवार ते चढ़दा है, फिर थले डिग जाता है। इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़दा है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसण लग पए। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है, डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? इह ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल ए है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा वड्डा राजा सी, इंद्र जिस दा नाम सी। इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है। ते मैं हसदा ता हां, ऐ भलिया तेनू धन भी दिता, सोहणे महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्नवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है ओह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधिए जे रहना होए, बहुता कुछ उत्थे बणाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा किथे तेंडे मापिया, भी किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने। इस तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹਿ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ।

गल राम दे नां दी है, पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला रहे। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

कुछ जवाना दे मुंह आवाज आ रही सी, कुछ पानी मंग रहे सी। ते एक सिख दे कन्नी आवाज पै गई, उन्हें मश्क चुकी ते पानी पलान लग पे। छड़िया जंग सी बड़े कमसान वाला, आमो सामने सुरमे डटे पै सन, लत्तां टुटियां छातियां फटियां सन, धड़कियां जवानां दे कटे पै सन। सूए सागरली उपरली सतह उत्ते मानो लाशियां दे लाशे अटे पै सन, पर अध मोयां दे मुंह आवाज आए, हाय हाय पानी, हाय हाय पानी, कोई अगले लोग दे पांदियां नूं जांदी वरदा आए पलाए पानी। सिख सुनदा की करदा, मश्क मोढे ते सिख दा समीच कीदा, बिना वितकरे पानी पलाई जांदा, तड़प तड़प पै देव दे जान, जेडे जान उन्हां दी जान विच पाई जांदी। हुण जिन्हों गर्मी दी रुत विच पानी मिल जाए, पहला पानी जीव है, वह जीव पैंदा, पानी पी के जिंदा हो जाता है, खड़ा होके फिर कई लड़दा है। पर किसी गुरां पास जा शिकायत की, सतगुरु जी जरा ख्याल लिया जे, मोया वैरियां ताई जवान वाला, वैरी विच बुकल तुसा पाल लिया जे। सतगुरु कहिंदे ने तुहाडा वैरी किहड़ा बन गया भाई? कह लगे जी आ भाई कन्हैया, यह साडा वैरी है, असी बड़ी मुश्किल जाके मार के उन्होंने ढाने गिराने, यह पानी पिला के फिर उन्होंने खड़िया कर देंदा। सतगुरु कह लगे बुलाओ कन्हैये, कन्हैया तेन सतगुरु याद कर दे। भाई कन्हैया जी आ गया, जी महाराज की हुक्म है? भाई कन्हैया पता लगा है कि तू वैरिया भी पानी पिला रहे, सिख शिकायत कर रहे ने। भाई कन्हैया की कहेंद, भाई कन्हैया कहें सतगुर जिथे चौवा पानी तेरा मुख दिसे, किसे गैर दे मुंह च पाया ही नहीं, तेरा दसिया तेनू मैं की दसा, तू ते दुई दा पाठ पढ़ाया ही नहीं, मेरे दातिया सारे मैदान अंदर तिथ बाज कोई नजर आया ही नहीं, मैं ते तुहाडे तो सुआ किसी नूं नहीं वेख्या, जिथे पानी चोना ना पानी पाना उथे मैनू तुहाडी कलगी जिगा नजर आउंदी। ते सतगुर केड़ा सिख है जो गुरु दे मुख विच पानी ना पावे। लो जी कलगीधर पातशाह, ये नहीं कि गुरु साहबां ने करके विखाया, सिखा अंदर भी ये गल है। सतगुरु ने सीने नाल ला लिया, आख्या कन्हैया तेरी बिनाई साफ हो गई है, तेनू वैरियां विच ते साडे विच अंतर ही नजर नहीं आ रहे। कहना जिथे जुआ पानी तेरा मुख दिसे, किसे गैर दे मुंह विच नहीं पा। सतगुरु मैं ते तेरे मुख विच पानी पा रहे, तेरे सवा कोई नजर ही नहीं आ रहा। सतगुरु ने फिर पता की कीता, एक मलम दी डब्बी ते नाल पट्टी भी दे दित्ती। भाई कन्हैया जिथे पानी पिला के जीवन दान देना है, उथे नाल मलम पट्टी भी करी। सतगुरु ते इहो जिहे गुरसिखां नूं इह उन्हां ने जाट समझाई है, पर अज दा सिख किथे खड़ा है? कि उहदे मन च इह विचार है, कि उहदी सोच इथों तक पहुंची है? जे अजे तक नहीं पहुंची ते किन्ना समा हो गया सानूं पढ़दे आ सुणदे आ, पर गल अजे उथे दी उथे खड़ी है, अगां नहीं गई। आओ कोशिश करिए जो सतगुरु ने बचन कहे ने इन्हां नूं कमा सकीए, इन्हां ते अमल कर सकीए। जे असीं अमल नहीं करांगे तद तक गल नहीं बनेगी, क्योंकि अमल तो बिना गल नहीं बननी। जब तक असीं इस ते अमल करके इन्हूं प्रैक्टिकल जीवन विच नहीं लियांदे तद तक गल नहीं बननी। सो सतगुरु जी सानूं इह गल समझा रहे ने, आओ भाई जोत नूं मुख रखो, जात नूं नहीं। ते जिन्हां ने जोत नूं मुख रखे है वो जुड़ गए ने परमात्मा नाल, वो परमात्मा विच अभेद हो गए ने, एकमिक हो गए ने। ते जिन्हां ने अजे जोत नूं नहीं मन्या, जात नूं मुख रखे है, वो परमात्मा तो दूर ने, अजे परमात्मा दे नेड़े नहीं हो सके। वो रहणगे भी दूर, क्योंकि वो दूरी उसे तरह पैदा करी जा रही है। जे परमात्मा दे नेड़े जाना है ते परमात्मा दे हुक्म नूं मनना पएगा, क्योंकि हुक्म मन्या होवे परवाह, प्रवानगी तां मिलनी है जे असीं उहदा हुक्म मन के चलांगे। सो सतगुरु जी ने इस जात पात नूं ऊंच नीच पिन पेत नूं मिटा के एक जोत दी गल कीती है।
ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾ ਸਕੀਏ ਜੀ।